लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः।

0: मेट्रो ट्रैफिक की मूवमेंट है बगैर किसी खलल के जारी है, और इस वक्त भी जो यात्रा के दोनों काफले हाईवे पर बढ़ रहे हैं, जो बालतल से वापस आ रहा है वो भी, और बाल जो जम्मू से बालतल की तरफ जा रहा है भगवती नगर से, जो आज सुबह 83 गाड़ियां निकली हैं, तो ये भी रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी हैं, और कुछ वक्त के बाद ये बानहाल पहुंचकर यहाँ पर इनका विश्राम होगा, कुछ टाइम के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तो होता है, तो उसके बाद इन्हें कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया जाएगा। तो दूसरा जो बाकी ट्रैफिक है, जम्मू से 7 बजे से ट्रैफिक को नगरोटा से जो वहां पर टाइमिंग रखी गई है, जो ट्रैफिक एडवाइजरी रोज जारी की जाती है,
1: जी
0: 7 बजे से 12 बजे तक जम्मू से जो भी गाड़ियां होंगी, जो पैसेंजर गाड़ियां होंगी, उनको कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। इसी तरह उधमपुर से सुबह 8 बजे से 1 बजे तक इनको कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। उसके बाद जो टूरिस्ट और जो अनरजिस्टर्ड यात्रियों की गाड़ियां होंगी, उन्हें 2 बजे के बाद रामबन से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, और 3 बजे के बाद बानहाल से

बरालू रहा कल भी, हल्की बारिशें रही और आज भी हल्की हल्की बारिशें कहीं कहीं हो रही हैं, लेकिन खास तौर पर आज मौसम विभाग ने उदयपुर और रियासी में भारी बारिशों की भविष्यवाणी की है। लेकिन दिन ढलने के साथ साथ बारिशें कब शुरू होती है ये कुदरत की बात है, लेकिन इसी के मद्देनजर भविष्यवाणियों को देखते हुए मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है और उनकी जो एडवाइजरी है उसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से श्रद्धालु सुबह तड़के 2 से 2:30 बजे के दरमियान बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से रवाना कर दिए गए। और आज भी भगवती नगर निवास स्थान से लगभग 1,795 श्रद्धालुओं का काफिला सुबह तड़के यहाँ से रवाना हुआ। 83 वाहनों में इस काफिले में शामिल 1,406 पुरुष और 399 महिलाएं शामिल थी। याद रहे कि ये बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने वाला 23वां काफिला है। सख्त

मौके भगवतीनगर बेस कैंप से हमारे साथ जुड़ रहे थे और आज के सभी अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इन्होंने ये बताया कि टाइमिंग्स में थोड़ी सी चेंजेस लाई हैं प्रशासन ने और 2 से 2:30 बजे के बीच में ही प्रातः जो है तीर्थयात्रियों को आगे कश्मीर घाटी की ओर रवाना कर दिया गया है। सुबह 2:30 के आसपास ये तीर्थयात्री जो हैं भगवती नगर बेस कैंप से आगे रवाना हुए।

श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण को आप सुनते हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस विशेष प्रसारण में हम आप तक तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स पहुंचाते हैं, हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं जो कि अलग अलग यात्रा ट्रैक्स पर ट्रांजिट कैंप्स में तैनात हैं, वहाँ

0: बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक

0: और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा

0: पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज़ है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजाम शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन की तरह कानूनी तहफ़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी तज़ीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज़ पहुंच रहे हैं।

गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन

0: किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी ज़िलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरे अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि ये कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनअती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत

0: गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मेयार इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला बना हुआ है जहां हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएँ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतरानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतह आब में इजाफा हो रहा है।

0: जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नवरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शिमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर

किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क्स और जदीद मजबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामा।

0: ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि बासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिले सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। गुहिरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्यामन्ना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल से 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.9।

कंपेयर करें तो 14 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता ऊंचे पर्वतों के बीच कठिन चढ़ाई होती है। और जब आप कठिन चढ़ाई करते हैं पैदल पोनियों पर या पिट्ठुओं पर सवार होकर जब आप ऊपर जाते हैं तो कभी कभी ऑक्सीजन की कमी कई सारे तीर्थयात्रियों में देखी जाती है। तो उसके लिए हमारे प्रशासन ने जगह जगह चिकित्सा की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आपके आसपास चिकित्सा की जो भी सुविधाएं रखी गई हैं वहां जाएं और वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो ठीक कर देंगे। श्रोताओं, आपको ये बताते चलें कि मौसम विभाग की पूर्व सूचना के अनुसार बारिशें होने के इम्कानात हैं और 31 तारीख तक फिलहाल बारिशें हो सकती हैं। और बालतल मार्ग से अभी तीर्थ यात्रा जारी है और आज भगवती नगर बेस

सर मैं बसारत गुल। लोकसभा ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतलिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल में मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजायाफ्त अफराद की जायदाद जब्त करने की सिफारिश की गई है। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमतें और मरकज के ज़ेर इंतजामी इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से UGC यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी जवाबित के तहत बावकार जुमरे में पहला मकाम अता किए जाने पर कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे के लिए एक तारीखी संग मेला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कामयाबी उन असातिज़ा मुहक्किकीन दानिश्वरों और तालिबे इल्मों की मेहनत और अज़्म का नतीजा है जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों में नुमाया मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने एक मीटिंग के दौरान खुराक व सिविल सप्लाईज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमों की कारगुजारी

एक महिलाएं, 12 बालक और 18 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अभी आप गायत्री मंत्र सुनिए।

श्यामन्ना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, हम हमारे संवाददाताओं से फ़ोन लाइंस के ज़रिए जुड़ते हैं और अब बारी है हमारे श्रीनगर के संवाददाता से जुड़ने की। फ़ोन लाइंस पे हमारे साथ पांता चौक ट्रांजिट कैंप से जुड़ रहे हैं इमरान नायकू। वहाँ से जुड़े अपडेट्स

वो भी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, वो भी अपनी सर्विसेज इस यात्रा को लेके दे रहे हैं, और खासकर श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप का जहां तक ताल्लुक है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी गवर्नमेंट की तरफ से अमरनाथ जी यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप एस्टैब्लिश किए गए हैं, वहां सरकार की तरफ से कड़ी निगरानी की जा रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो बेसिक अरेंजमेंट्स या फैसिलिटीज है उनको लेकर भी। और यहाँ श्रीनगर से खासकर जो लोक भवन में यहाँ अमरनाथ जी

कैंप में रात्रि विश्राम के लिए रोक दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से उन्हें आज सुबह बालतल के मार्ग की ओर रवाना कर दिया गया। और अभी जितने भी तीर्थयात्री, जिनकी संख्या 1795 है, जो आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए हैं कश्मीर घाटी की ओर, वो भी दोपहर तक पांथा चौक वाले ट्रांजिट कैंप में पहुंचेंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति अगले दिन दी जाएगी। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर सुन रहे हैं और आप हमें YouTube की आराधना चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी सुन पा रहे हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर सुन रहे हैं। हम उपलब्ध हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर, YouTube की आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस विशेष प्रसारण के जरिए हम कोशिश करते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। आज अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 28वां दिन है और

सुबह 10 बजे तक 1,402 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बालक एवं बालिकाएं के साथ साथ साधु भी शामिल हैं और इनका साथ मिलाते हुए हमारे सुरक्षाकर्मी भी। श्रोताओं, 855 पुरुष हैं जिन्होंने सुबह से अभी तक बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है, 426 महिलाएं हैं, 37 बालक एवं बालिकाएं हैं, 9 साधु और 33 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। ये संख्या है उन यात्रियों की जिन्होंने आज सुबह 10 बजे तक पवित्र गुफा में जाके माथा टेका, वहाँ पे जाके शिवलिंगम के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई। जहाँ श्रोताओं,

बालतल के मार्ग से FM 103.7 MHz पर, पहलगाम से FM 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH के आराधना सर्विस और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है और इस विशेष प्रसारण के जरिए हम कोशिश करते हैं कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। श्रोताओं, प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की मैक्सिमम संख्या निर्धारित की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यात्रा के सुचारू संचालन हेतु इस सीमा का पालन करना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा प्रारंभ होने से काफी पहले ही देश भर में

0: rose 9 points to 77,663, while the Nifty added 6 points to 24,257 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं बालतल से एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा, पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब की आराधना चैनल और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 28वां दिन है और आज तीर्थ यात्रियों को सिर्फ बालतल के मार्ग से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि पारंपरिक पहलगाम मार्ग पर अभी

0: तब तक उन्होंने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेक लिया है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप ये विशेष प्रसारण सुन पा रहे हैं बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा पहलगाम से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच की आराधना सर्विस और यूट्यूब के आराधना चैनल के अलावा भी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.

शाम 6 बजे तक होता है और इस विशेष प्रसारण के जरिए हम कोशिश करते हैं कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक हम पहुंचा सकें। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज तीर्थ यात्रा का 28वां दिन है और 23वां जत्था जो आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुआ था वो कश्मीर घाटी में पहुंच चुके हैं अभी, जिनकी संख्या 1795 थी। वो आज रात्रि विश्राम के लिए पांथा चौक वाले ट्रांजिट कैंप में रुकेंगे और कल सुबह उन्हें बालतल की ओर रवाना कर दिया जाएगा। श्रोताओं, 12 बजे तक का दर्शन

ऐसे तीर्थयात्री जिन्होंने सुबह से लेकर 12 बजे तक बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है। श्रोताओं, आपको बताते चले कि पहलगाम का पारंपरिक मार्ग फिलहाल यात्रा के लिए बंद है, क्योंकि वहां के यात्रा ट्रैक्स में थोड़ी मरम्मत हो रही है और अभी प्रशासन के जरिए ये सूचना मिली है कि फिलहाल वो रास्ता जो है यात्रा के लिए बंद रखा जाएगा और जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं उन्हें बालतल के मार्ग से ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी तीर्थ यात्री को पहलगाम के मार्ग से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अगर आप तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बालतल के मार्ग से ही बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाने की

आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी हाँ श्रोताओं, आपको बताते चले ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालतल एवं पहलगाम के अलावा DTH सर्विस यूट्यूब चैनल और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी तक आप ये प्रसारण मेरे साथ यानी कि इरम के साथ सुन रहे थे। अब हमारी साथी उद्घोषिका फरजाना आपके साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर बाद। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपके साथ जुड़ेंगी इस विशेष प्रसारण में हमारी साथी उद्घोषिका फरजाना। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल

एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा 2026 जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जुलाई को शुरू हुई और अभी 28 अगस्त तक चलेगी। अभी तक अगर हम देखें तो कुछ ही हफ्तों में 4,14,000 से ज़्यादा भक्त जो हैं दर्शन कर चुके हैं।

भी यात्री को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आपके पास जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। अगर रास्ते में तेज़ बारिश या ख़राब मौसम होता है तो यात्रा को कुछ घंटों के लिए निलंबित किया जाता है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर एक बड़ा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, जहां ख़राब मौसम के दौरान 5,000 से 6,000 यात्री आराम से रुक सकते हैं और 24 घंटे जो है लंगर चलता रहता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे संग बने रहिए और सुनते रहिए अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण।

जी हाँ, 1 बजे का दर्शन अपडेट हम तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आज 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक कुल 3,810 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, और इनमें पुरुषों की संख्या है 2,609, महिलाओं

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: पुलिस डायरेक्टर जनरल ने नोटिस जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
0: खबरों तो बाद
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं करीम अहमद। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी।

0: 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौरते मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित को सोने का तमगा देने और जीतने और मोहम्मद बासिल को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। बाद में जब स्पीकर ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करना पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।
0: शोरगुल जारी पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की गोली बारूद की तफसीलात महफूज रखने को कहा है। अदालत आलिया ने उन अर्जदाश्तों में एक पर सवाल उठाया जिसमें अमन व कानून की सूरत हाल से निमटते वक्त मेटेलिक पैलेट गन पर मुकम्मल पाबंदी की गुजारिश की गई है। उसने पुलिस तहकीक व तरक्की के ब्यूरो की एडवाइजरी का हवाला दिया और कहा कि पुलिस को गैर मामूली सूरत हाल में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला माल्याबागची और वी मोहना पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी हुए अफराद को इलाज व मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से 2020 के फसादात के एक मामले को मंसूख किए जाने के खिलाफ चंडीगढ़ की इंतजामिया की एक अर्जी पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और आपके दीगर रहनुमाओं से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमालिया बागची और जस्टिस वी मोहना की एक बेंच ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीठेयर, बलजिंदर सिंह कौर, अमन अरोरा और दूसरों को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू

आईएमडी ने शुमाल मशरकी भारत में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी राजधानी में अगले 2 से 3 दिन तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। कनाडा के शहर ओंटारियो में भारत की मर्दों की स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत की 5वीं पोजीशन की मर्दों की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, जो जापान को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। खास खास खबरें एक बार फिर। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के कसूरवारों के लिए सख्त कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान RAF की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को महफूज रखने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग जारी है।

मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम

0: सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे

0: पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरुमध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी

FM बेलगांव साउथ शिमला 1 DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट आया है हमारे दर्शन अपडेट जो है 2 बजे का। आज दोपहर 2 बजे तक कुल 4,331 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन

5 लीटर पानी या लिक्विड ज़रूरी पिएं। अगर रास्ते में उल्टी, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो तो वहीं रुकें और तुरंत हर 2-3 किलोमीटर पर बने मेडिकल कैंप में डॉक्टर से मिलें। खवातीन साड़ी जो पहनती हैं, जो भी महिलाएं साड़ी पहनती है वो ना पहने और शलवार कमीज़ या ट्रैक सूट ही पहने, क्योंकि साड़ी पहनकर यात्रा पर बहुत मुश्किलें होती हैं। इसलिए कोशिश करके सलवार कमीज़ और ट्रैक सूट ही पहने। साथ ही अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ का ही इस्तेमाल करें, चप्पल का उपयोग बिल्कुल ना करें।

नदियां हैं उसको लेकर जुटे हुए हैं। तो यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में, जैसा कि मैंने कहा कि पहले दिन से तमाम तरह की सुविधाएं और लंगर, योगा, मनोरंजन, भजन, भक्ति संगीत, अंदर जाते ही समझ ले आपकी जहाँ परिसर पूरी तरह से भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, वहीं ये सारी सुविधाएं और प्रबंधन पूरी तरह से बना हुआ है ताकि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी ना हो। आज भी यहाँ इसी निवास स्थान से लगभग 1,700 से ज्यादा तीर्थयात्री रवाना कर दिए गए, और हालांकि अब ये थोड़ा इसकी वक्त जो है उसका थोड़ा सा और पहले कर दिया गया है। सुबह तड़के हुआ करता था ये वक्त, लेकिन अब ये उसको और पहले कर दिया गया क्योंकि मौसम की को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुबह तड़के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ से रवाना कर दिया जाता है वादी की तरफ, और फिर वो वक्त से पहले भी कई बार बालटाल के रूट पर बाबा बर्फानी के दर्शन की तरफ रवाना हो जाते हैं, तो एक पहुंच भी जाते हैं और उसके अलावा अच्छे टाइम पे उन्हें निकलने का मौका भी मिलता है, और इस पूरी पूरे जज्बे और इस जोश में श्रद्धालु जो है वो पूरी रात अपनी तैयारियों में अपनी

0: करना होगा। तो क्या नेशनल हाईवे पर लोकल सिविलियन ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, और वहाँ क्या सिस्टम है उस चीज़ का, उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
1: देखिए, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जो ट्रैफिक विभाग है वो भी कई बार इसमें चेंज लाता है। हर बार, हर दिन नया एक एडवाइजरी सामने आता है, शाम को वो पहुंचता है और उसी हिसाब से तीर्थयात्रियों को जाने आने की इजाजत होती है।
0: जी
1: पहले जो था वो लगभग कोई जब जो श्रद्धा जो यात्रा के पहले दिन थे उनमें पहले रश ज्यादा था, तीर्थयात्री ज्यादा थे, उस वजह से कई बार जो था कि जम्मू की अलग टाइमिंग होती थी, 7 बजे से पहले आपको जम्मू से जाने की इजाजत नहीं होती थी, सुबह 7 बजे से पहले स्थानीय जो ट्रैफिक है, और यहाँ कश्मीर से 11 बजे के बाद जाने की इजाजत होती थी स्थानीय ट्रैफिक को। तो रोज रोज चेंज तो की जाती है क्योंकि स्थानीय ट्रैफिक को भी चलाना है, पर्यटन को भी देखना है, कश्मीर की तरफ पर्यटन भी पर्यटक से जुड़े जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो उस वजह से चेंज भी आती हैं, और जिसकी वजह से वो सिर्फ चेंज इस वजह से होती हैं क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनको आसानी दी से उनको न सिर्फ जम्मू लाया जाए बल्कि जो रवानगी होती है यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की तरफ बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ उनको भी आसानी के

0: हैं जिनकी ड्यूटी है, जो एक एक कागज का चेक करते हैं, उसके बाद ही जाने की अनुमति देते हैं। और जो तीर्थ स्थान है, ये अपना भगवती नगर का जो निवास स्थान पहला है, वहां पर श्रद्धालु जो है वो वहां पर वही पहुंचेगा जिनके पास पूर्ण तरीके से अपने दस्तावेज पूरे होंगे, उन्हें ही वहां भेजा जाता है, उनकी ही वहां ट्रेनिंग, और वही सुबह फिर रोजाना रवाना होते हैं। ट्रांजिट
1: जी
0: कैंप से उनको वहां भेजा जाता है।

कोमो के भगवती नगर कैंप से 1795 यात्रियों का 23वां जत्था जो है वो रवाना हुआ। इस बैच में 1406 पुरुष और 389 महिलाएं शामिल हैं। सारे यात्री जो हैं वो 83 वाहनों के बड़े काफिले में निकले हैं। पिछले दिनों के मुकाबले ये इस साल का अब तक का सबसे छोटा बैच है। आपको बता दें कि जम्मू से रवाना हुए पूरे कॉन्वॉय को सिर्फ बालतल मार्ग के लिए ही भेजा गया है। मेंटेनेंस और ट्रैक पर

अभी भी बोली जाती है। अगर आप जम्मू में हैं और आप जम्मू घूमना चाहते हैं तो कुछ जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं और जम्मू शहर का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप रघुनाथ मंदिर जो है वो देख सकते हैं। ये शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद पवित्र और बड़ा मंदिर है जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करवाया था। इसके साथ साथ आप बहु फोर्ट और बागे बहु जिसे कहा जाता है वो भी देख सकते हैं। तवी नदी के दूसरे किनारे पर एक पुराना किला है जिसके अंदर माता काली का मशहूर मंदिर है। इसके पास ही एक खूबसूरत बाग है जिसे बागे बहु भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप मुबारक मंडी पैलेस जो हैं वो भी देख सकते हैं। ये डोगरा राजाओं का पुराना महल है जो अपनी शानदार आर्किटेक्चर और मुगल स्टाइल के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ आप अमर महल पैलेस म्यूजियम जो है वो भी देख सकते हैं। ये एक फ्रेंच स्टाइल का महल है जो अब एक म्यूजियम है। यहाँ सोने का सिंहासन और पुरानी पेंटिंग्स जो हैं वो देखी जा सकती है। अगर आप जम्मू में हैं और जम्मू के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जम्मू का खाना जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपको राजमा चावल जम्मू के जो हैं वो ट्राई करने चाहिए। जम्मू के जो राजमा है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिन्हें देसी घी और अनारदाना चटनी के साथ परोसा जाता है। इसके साथ साथ आप कलड़ी कुलचा जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। कलड़ी जो है वो जम्मू की एक लोकल ट्रेडिशनल पनीर जैसी होती है जिसे सेक कर कुलचे के अंदर रख कर खाया जाता है। इसके साथ साथ आप अम्बल भी वहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये एक खट्टा मीठा डोगरा डिश है जो शादियों और त्योहारों पर बनती है। इसके साथ साथ वहाँ की जो लोकल मिठाई है, चॉकलेट बर्फी, पतीसा वगैरह, वो देश विदेश में मशहूर है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और साथ साथ अपने परिवार वगैरह के लिए भी ले जा सकते हैं। जम्मू जो है उसे कश्मीर और श्री माता वैष्णो देवी जी जाने वाले यात्रियों के लिए मेन गेटवे माना जाता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और जम्मू एयरपोर्ट के जरिए देश भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीडीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे पहलगाम, जहां से हमारे संवाददाता इस तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास। जी तारिक,
1: बहुत शुक्रिया। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के रिवायती पहलगाम मार्ग पर पहलगाम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक मजमू तौर पे मौसम खुशगवार है, मगर अबरालूद भी। शाम के वक्त विभिन्न स्थानों पर वक्ते से हल्की वर्षा, गरज चमक और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं तेज वर्षा या शदीद गरज चमक के साथ बरसात होने का अंदेशा भी जताया गया है।
0: जी।

में इस समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। लगातार वर्षा से हुए नुकसान को मद्देनजर पाएगा मार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का क्रिया जारी है, तेजी से जारी है, जिसके कारण ये मार्ग फिलहाल आरजी तौर पे आज भी बंद रखा गया है। इस समय श्री अमरनाथ जी यात्रा श्री बागटन मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। इसी को चलते जम्मू के भगवती नगर आधार शेवर से 83 छोटी बड़ी वाहनों में

0: के लिए अमरनाथ यात्रा श्री बांकर मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। इसी को चलते जम्मू के भगवती नगर आजाद शहर से 83 छोटी बड़ी वाहनों में पर मुश्तमिल 1795 श्रद्धालुओं का एक नया जथा बांकर मार्ग पहुंच चुका है। इस जथे में 1406 पुरुष और 389 महिलाएं शामिल है। श्रद्धालु दिनों की इस यात्रा के दौरान जो का आगाज जब से हुआ है अब तक दर्शन करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 441,575 हो गई है। रिपोर्ट फाइल करने पर तकरीबन 5,000 यात्रियों ने दर्शन प्राप्त कर लिया है और दर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है। इधर कार्यक्रम के दोनों आदर्श सेवा सूचना बोर्ड शहरों में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। अलबत्ता यात्रा मार्ग और सभी शहरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बराबर वहाँ सेवा के लिए मौजूद है। जी
1: जी तारिक, जैसा कि आपने कहा कि अभी काम जारी है जो

0: इसके साथ ही जो टारगेट सरकारी तौर पे जो टारगेट लगाया गया था वो तकरीबन 4.5 से ऊपर ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुई थी और वो तकरीबन वो तादाद भी पूरी हो चुकी है, बहुत कम उसके 4.5 लाख तक, तो शायद यात्रियों का जो है आना भी सिलसिला वो थोड़ा सा कम पड़ेगा, वो धीमी पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि यात्रियों को जमा करके एक साइड से लिया जाता है, फिर कभी कभार जब उनकी तादाद ज्यादा होती है तो फिर दूसरे साइड से भी उनको खोल दिया जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही प्रशासनिक कार्य शायद कोई फैसला ले सकती है या परसों, तो उसके बाद ही इस बारे में कह सकते हैं कुछ।
1: जी तारिक, जैसा कि हम जानते हैं कि पहलगाम का जो मार्ग है अब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह खुलने वाला है, तो अगर हम देखें तो पहलगाम जो मार्ग है वो लंबा है, पारंपरिक रास्ता है, नो फ्लाइंग जोन जो है उसे बताया गया है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस वगैरह नहीं रहेंगी, तो जो बुजुर्ग यात्री है वो चंदनवारी, शीशनाग और पंचतरणी के रास्ते पैदल नहीं चल सकते हैं, हम जानते हैं उन्हें पोनी पिट्ठू वगैरह के जरिए ही जो है

वाले हैं वो भी इनकी सहायता के लिए हमेशा वहां खड़े होते हैं, बल्कि ज्यादा होते हैं। तो उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। जो वाले की 4,000 से लेकर 5,000 तक लेती, वो सरकारी तौर पर उनसे कहा गया है, जो मुझे एक्यूरेट मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो सरकारी तौर पर उनके साथ डील किया गया है कि किस दिन कौन सी रेट हो सकती है। इसी तरीके से घोड़े वालों की भी एक रेट होती है, जो दो दिन अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं, 4,000 5,000 तक वो अपना घोड़ा जो है

0: प्रशासन के द्वारा उनको सारी गाइडलाइन दिखाई जाती है, फिर उसके बाद उनकी बाकी जो जो भी कागजी लवाजमात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन दी जाती है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है।
1: जी तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये सारी इन्फॉर्मेशन्स पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता तारिक पहलगाम से, जिन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है और कुछ दिनों में जो है पहलगाम का मार्ग जो है वो शायद खुल सकता है। तो अभी आपको बता दें कि अभी यात्रा सिर्फ और सिर्फ बालतल मार्ग से जारी है, क्योंकि पहलगाम मार्ग पर जो है मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से पहलगाम का मार्ग यात्रियों के लिए बंद रखा गया है। तो अगर आप भी इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ बालतल मार्ग से ही दर्शन के लिए जा सकते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ श्रोताओं, आप तक चार बजे का जो दर्शन अपडेट है वो पहुंचाना चाहेंगे। आज 4 बजे तक कुल 5114 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो हैं प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की

23, साधु 22, साध्वी 14, 5 ट्रांसजेंडर, 114 सुरक्षाकर्मी और 2 विदेशी महिला यात्री। जी हाँ, जिससे आज 4 बजे तक कुल संख्या बन रही है 5114, जिन श्रद्धालुओं ने जो है बाबा बर्फानी की गुफा में जाकर महादेव के दर्शन जो है वो प्राप्त कर लिए हैं।

जी हाँ, इसके बाद अगर पहलगाम की बात करें, इसे वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। ये लिदर नदी के किनारे स्थित एक बेहद शांत और खूबसूरत एक हिल स्टेशन है। जाओ यात्रा, अमरनाथ यात्रा का ट्रेडिशनल जो मार्ग है, जो पारंपरिक मार्ग है, वो यहीं से शुरू होता है। सोनमर्ग की अगर बात करें, इसे मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। ये सिंध नदी के किनारे है और यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे थाजवास ग्लेशियर है, ट्रैकर्स और नेचर लवर्स को बहुत पसंद आते हैं। अगर हम मुगल बागों की बात करें तो श्रीनगर में बने शालीमार बाग, निषाद बाग, चश्मशाही अपनी मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर और बेहतरीन फव्वारों के लिए जाने जाते हैं। आप कश्मीर में हैं तो यहाँ के खाने की अगर बात करें तो बहुत ही लजीज खाने यहाँ मिलते हैं। आप यहाँ का फूड यहाँ का ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कश्मीरी वाजवान है। ये कश्मीर का एक ट्रेडिशनल मल्टी कोर्स मील है, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा जो पकवान हैं वो बनते हैं, और जो ज़्यादातर नॉन वेज ही होते हैं। आप कहवा यहाँ का ट्राई कर सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल कश्मीरी चाय है जिसमें केसर, बादाम और इलायची डालकर पिया जाता है और ये शरीर को गर्म रखता है। नून चाय की अगर बात करें, ये एक नमकीन गुलाबी चाय होती है, जिसे लोकल लोग जो है, हम लोकल कश्मीरी जो है, वो सुबह शाम लोकल ब्रेड के साथ पीते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ खरीदने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोकल चीज़ें हैं, आप शॉपिंग

शूज़ जो हैं उनका ही इस्तेमाल करें। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट द्वारा मिला RFID ट्रैकिंग कार्ड हर वक्त अपने गले में पहन कर रखें। इसके बिना ट्रैक्स पर एंट्री नहीं मिलती है और कश्मीर में बाहर के स्टेट्स के जो प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं वो काम नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ पोस्ट पेड सिम ही चलते हैं। अपने साथ एक पोस्ट पेड सिम जो है वो ज़रूर रखें। इसके साथ साथ अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट वगैरह जो है हमेशा कैरी करें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और प्रशासन द्वारा जो भी

महादेव, कालों के काल, महाकाल, नाथों के नाथ, अमरनाथ, बाबा बर्फानी के इस पावन धाम में, मंगल भवन में, सुंदर प्राकृतिक भवन में, दिव्य भवन में, आप सभी भक्तजन सायंकालीन आरती में बाबा के धाम में बैठकर बाबा की इस आरती का दर्शन कर रहे हैं, भोले बाबा के धाम का दर्शन कर रहे हैं, बाबा के इस मंगल भवन का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आप सभी भक्तजन बाबा के कृपा पात्र हैं। आए बाबा कि आप पर पूर्ण कृपा हुई है जो आप आज बाबा के धाम में आए हैं और बाबा के धाम में आकर बाबा के इस सुंदर आरती के धाम के दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा के अनेक नाम है। बाबा को शंकर कहते हैं। शंकर किसे कहते हैं? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शंकर होती इति शंकर, जो कल्याण कर देते हैं वो शंकर है। और कल्याण भी ऐसे करते हैं कि बिना सोचे समझे कि भक्त ने मेरी कितनी सेवा की है, यह भाव नहीं देखते, बस प्रेम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से बाबा के दाम

हो जाए तो पूरा जीवन भी पूरे शास्त्रों को, उपनिषदों को नहीं पढ़ पाएंगे, पुराणों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करना चाहिए कि सार, जो सार को ग्रहण करना चाहिए। सार क्या है? जो पुराणों का सार, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्, कि 18 पुराणों का सार क्या है कि कुछ दूसरे के काम में काम आए और दूसरों को कष्ट न दे, परोपकार करें, दूसरों को दुख ना दे, ये सार ग्रही बात है। और सार क्या ग्रहण करना है कि संसार दुखालय है, दाम सुखालय है, सार कष्ट है और बाबा का दाम आनंद।

आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स सजाद अहमद गुरकू, मंजूर अहमद नजार और उनके साथ है शौकत अहमद खान। मैं आपकी उद्घोषिका फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

में ऐसा हुआ, भगवान शिव का गला नीला पड़ने लगा। अंत में सभी देवताओं ने पानी अत्यधिक मात्रा में उनको चढ़ाने लगे, तो ऐसे में भगवान शिव शांत होने लगे थे। हम जानते हैं कि भगवान शिव जब इस धरती पर अपने कैलाश शिखर से आते हैं तो आने के बाद सब जगह प्रसन्नता छा जाती है, और भगवान शिव ने पूरे भारत वर्ष में 12 जगह अपने प्रकाश को, अपने स्वरूप को ज्योतिर्मय के रूप में रखा। आइए एक श्लोक के माध्यम से द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च।

साधक, कोई भी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सोमनाथ मंदिर में जाते हैं। भगवान सोमनाथ में जैसे विराजमान हुए, उनकी कृपा सब पर बरसने लगती है कि सब लोग वहां जा करके माथा टेकते हैं और वह मंत्र भी जल चढ़ाते हुए अर्पित करते हैं। आइए हम मंत्र भी सुनते हैं जो अभिषेक करने वाले हैं।

पापकासिनी तयान संतमया गिरिसंताभिचाकसी या मुसुंगीरि संते हस्ते विभयस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरुमाहि वंशी पुरुषं जगता। इस तरह

यही दुर्गा देवी जमुना द्वारा असंसार चक्र चाल्या करेश। योगियो जमनो सदैव चिंतन करेश। जमना प्रकाश थी आ समस्त जगत प्रकाशित थई रह्यू छे। ते दुर्गा जगत जननी महाशक्ति छे। आसुरी शक्ति ऊपर दैवी शक्ति नो विजय दर्शावती आ महाशक्ति नी भारत

पहलू नाम छे शैलपुत्री, बीजा छे ब्रह्मचारिणी, त्रीजा चंद्रघंटा, चौथा दुर्गा कूष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, छठू स्वरूप कात्यायनी, सातवां स्वरूप कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी, अने नवमू स्वरूप छे सिद्धिदात्री। आ नव दुर्गाओ एमने मैं प्रणाम करीश।

मां प्रथम स्वरूप शैलपुत्री छे। आ शैलपुत्री पार्वती देवी छे। शैल पर्वतोना अधिराज हिमालयना पुत्रीनु पार्वती नाम छे, ये तो जाणीतुं छे। अने ए पार्वती शैलपुत्री, गिरिराज हिमालयना आ पुत्री पार्वती देवी जो कि सौना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थईने तेमना पुत्री तरीके प्रगट थया, तेथी क्रममां आवे छे। एमनु वंदन आ रीते थई।

तैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थ वृष बळल उपर विराजेला, त्रिशूल ने धारण करणारा, जमना मुगटमा अर्धचंद्रशे एवा यशस्विनी, शैलपुत्री, हिमालय तनयाने

भक्ष यज्ञ विनाशिनी। अर्थ जोई ई दुर्गा माता सती साध्वी भगवान सदाशिव ऊपर प्रीति राखणारा भवानी संसार बंधन माथी मुक्त करणारा आर्या दुर्गा।

कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।